प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै तुजी हर सच्चे सिर जनहारा सब जीत माडे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतोह जी।

अर्ध सहस पुण तीन कह जाय भाद्र सुधि अष्टमी रव बारा तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधारा यत श्री चरित्र पख्याने त्रियं चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मस्त सो मस्त आप जुं दोहरा दास जान कर दास पारू कीजा कृपा अपारू आप हाथ दर राख मोहे मन क्रम बचन बिचारू चाउ पई मैं नगरे सा प्रथम नाऊ किशन भिषण कब हूं न त्याऊ

राग गौड़ी पूर्बी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहु हरलाहा गबसन सुहेला औद कटा दिन सराय नारे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह त्रयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जुगाए पिया वै हो रस अकथ कथा बिन जानी जा कौ आए सोई बिहज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहज

ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਪੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਉਜ ਕਿਹਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਾਹਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਕਮਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿ ਤੁਪੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥਾ ਕਮਨ ਕਰਮਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤ੍ਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਵਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਭਾਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰ ਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬਤੰਦੇ ਨਮੋਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ੍ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਭੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨੂਪ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਪੂ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਪੇਖ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਪੇ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਨ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਭਰਨ ਹੈ ਗੰਜ ਹੈ ਭੰਜ ਹੈ ਛੂਜ ਹੈ ਚੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ ਸੂਝ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰੇ ਲੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਲੋਕ ਹੈ ਸੋਕ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਬਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੋਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭਾਉਣੇ ਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ
नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सुवरं परम रूपे नमो जोग जोगे सुवरं परम सिद्धे नमो राज राजे सुवरं परम परिद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे सुवरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह नमो भूपूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता दु उर्ध अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोज पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तास्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पोजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व भीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्यंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चटपट छंद त्वप्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्वप्रसाद आदरूप अनाद मूर्त अजोन प्रखपार सर्वमान त्रिमान देव पिवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर तर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जतर तत्तर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनांत को फिरेक देव भेव न जानहि जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानहि केह जेब तात मात न जात जा कर जन्म मरण बिहीन चक्कर बक्कर फिरा चक्कर चक मानहि फुरतीन लोक चौदह के बेखा जग जाप ही जेह जाप आद देवनाद मूर्त थप्यो सब जेह था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विसरच्यो सुन्यम पावगण पंजनहार काल हीन कला संजोगत काल पुरख अदेह तरन ताम सो परम रहत तलख पेस अंगराग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनोस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेक सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अररेक परमेद पुराण जा कह नित भक्त नेता कोट सिमरित पुराण शास्त्र नाव ही वह चित मद पार छंद प्रसाद गुण गण उदार महिमा पारासन भंग उपमा नंगन पौ प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु सहान साह राजान राज पहानान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान कालान भूतांग बापंगत मित पार गुणगन उदार
मन गन प्रणाम निरपह निकाम आत दुत प्रचंड मित गता खंड आलिशा कर्मा दृश्य धर्मा सर्वा प्रनाडा दंड बाडा चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्रा न मित्रा न परमंग न पित्रा न कर्मंग न काये जन्मंग अजाये ना चित्रा न मित्रा परे पवित्रा पृथीसा दिशा दृशा कृशा भगवती छंद प्रसाद कथते के आ छज देसा के आ पैज पेशा के आ गंज कर्मा के आ पंज परमा के आ पैज लोका के आ दित सोका के वदूत करना के विभूत करना के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वरना के सर्वा परना के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपा के अनुभव अनुपा के आद देव है के आप भेव है के चित्रंग विहीना के कधीना के रोजी रजाका रहीम रिहाका के पाक ब्याब है के गैब गैब है के अपवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पहुना के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राणा के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पहना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वंग कलीमा के परमंग भीम के आकल अलामा के साहिब कलामा के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामा सली कुतमदामा गनीमुल सकस्ता गरीबुल प्रस्ता बिलंदुल मकाना जमीनुल जमाना तमीजुल तमामा रुजूल निदाना हरी फुल अजीमै रजायक यकीनै नेपुल तरंग हैं भेद हैं पंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सो जुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं भेदी अनूप हैं समस्तो प्राज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओ अंग आद रूप नाद स्वरूप नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपर्ग त्रिपादे अगंजे अगादे सुभंग सर्व पागे सो सर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है छज है छूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं नंग हैं भेख हैं लेख हैं परम हैं कर्म हैं नाद हैं जुगाद हैं अजय हैं वै हैं भूत हैं धूत हैं नास हैं दास हैं तंद हैं बंद हैं भगत हैं विरक्त हैं नास हैं प्रकाश हैं

नाद हैं, नित हैं, सुनित हैं, जात हैं, जाद हैं, चर प्रछंद, प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राण, सर्वंग त्राण, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग धर्मंग, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद, प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रा न पुत्रा न सुत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कह मितो मी कह सदैवं प्रभा है जय है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी देहंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं करीमुल खराज हैं गरीब उल निवाज हैं हरी फुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है केसरबुल गवन है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है मीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो बेपूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग नंग हैं के मित्तो अपंग हैं मद पार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर बरागंज हर नर प्रपांजानगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नरा खंड बर नरा मंडन पवनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल धर्म दाम अन छेजंग आसना पंग उपमा पारगत मित उदार जल थला मन दिस विस पांड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनाथ रित तर तुरास आ जान बाहो एक सदा हो ओ अंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल खर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिजगात आज जन बात अन चंजगात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठटा पार आदीठ धर्मत ठीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है रकाला है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोवारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्या है सर्वनास्या है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड सें खलखंड सें परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अजबा कृत हैं अमृता अमृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं करुणालय हैं नायक हैं सर्वपायक हैं पपंजन हैं अरगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्मा हैं सर्वात्म हैं आत्म बास हैं जास के जास हैं पो जंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सात रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादम विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजाल अप अब अपू अजू अनास अकाश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह टाह नाथे परमाथे अजूनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे पो जंग प्रयात छंद
नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामें विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सोतर्मं विपूते सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासी क्री मुलुक निंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं क्रियं करीं हरियं क्रियं क्री मुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पूते संयम पास।

अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक हिमालय पहले के लिखे टुंडिया सराज की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानसे देवते की

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो देखें लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी शिव सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।

तीर्थ ना मेरचा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुन त्यम जिते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काय कायकार सत्य मन संतोख उपजे देने कै विचार दे दे मंगे सस गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा विकार

श्लोक में लपेला दुख दर सुख रोग भय जांचताम न हो तो करता करना मैं ना जाऊं करी न हो।

ज्ञानी पूजे ताए सतगुरु संतोख धर्म गिरथवाहो त्रितर जते का जुर गिरथवाहो द्वापर तपे का सत्य गिरथवाहो कलयुग रथ

असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता असंख सूर

शंख मूर खांद कोर शंख चोर हराम कोर शंख अमर कर जा हे जोर असंख गल व्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे

परवाणं नदरीकरंपवानीशान कठपकायोत्थापाय नानक गया जापा जाए धर्म खंड का ये हो कर्मा ज्ञान खंड का को हो कर्मा इते पमन पाणी वै संतर इते कान में हिसा इते बर में का खड़ी है।

0: हमरी रक्षा करे ओले सोनियाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
1: Thank you.